सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 24 जुलाई 2026 शुक्रवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर।

यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। जब कोई आवाज दिल की तार छू जाए, एक ऐसे ही आवाज थी गीता दत्त, नाजुक सी लेकिन अंदर से एक तूफान, रोम रोम में मस्ती लेकिन आंखों में कहीं उदासी। वो सिर्फ गाती नहीं थी, जज्बात को आवाज देती थी, छेड़ती थी तो चीख भी खुश हो जाए और गुनगुनाती तो दर्द भी मुस्कुराए। चाहे वो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे हो या वक्त ने किया क्या हसीन सितम, गीता जी के सुरों ने हर जज्बे को छूना था। आइए उन्हीं सुरों के सफर पर, जहां एक आवाज थी जो खुद एक दास्तान थी। ये है गीता दत्त के गीतों का जादू, एक सुनहरे पल।

0: वक्त ने किया।
1: गीता घोष राय चौधरी 10 बच्चों में से एक थी। उनका जन्म इदलपुर नामक गांव में एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में आता है। अपने जमाने की मशहूर गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ। बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज की धनी गीता दत्त फरीदपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। गायिका का पूरा परिवार 40 के दशक में कोलकाता आ गया और फिर वो सब मुंबई चले गए। गीता दत्त का संगीत में रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। उनकी माँ अमय देवी एक कवयित्री थी और उनके पिता मुकुल राय संगीतकार थे। इसी वजह से संगीत के साथ उनका परिचय काफी कम उम्र में हो गया था।

बचपन के दिनों से ही गीता दत्त का रुझान संगीत की ओर था और वो पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। गीता दत्त ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से हासिल की। गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म बक प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। गीता दत्त ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच उनकी मुलाकात महान संगीतकार एसडी बर्मन से हुई। गीता राय में एसडी बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त से अपनी अगली फिल्म दो भाई के लिए गाने की पेशकश की।

0: धीरे चलना।
1: वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिनी कैरियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया ये गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई।

वर्ष 1951 गीता दत्त के सिनी करियर के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया मोड़ लेकर आया। फिल्मबाजी के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक गुरुदत्त से हुई। फिल्म के एक गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त को देख गुरुदत्त मोहित हो गए। इसके बाद गीता दत्त भी गुरुदत्त से प्यार करने लगी। वर्ष 1953 में गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी कर ली। इसके साथ ही फिल्मबाजी की सफलता ने गीता दत्त की तकदीर बना दी और बतौर पार्श्व गायिका वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई।

0: गाने।
1: दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने की दिलकश अंदाज के मिल का गीता दत्त भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी प्रभाव की पहचान थी और वो ऐसी फनकार थी जिन्होंने हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। गीता दत्त की जादुई आवाज सबसे पहले जोगन में सुनने को मिली। इस फिल्म में उन्होंने मीरा के आत्रनाद को उड़ेल कर श्रोताओं को विरही बना दिया है। वह खुलकर गाती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, घूंघट के पट खोल रे तो हे प्रिया मिलेंगे। और गीता के प्रिया उससे 9 साल पहले चले गए। वह गाती रही, जोगी मत जा मत जा। गीता दत्त ने गुरुदत्त की फिल्मों में क्या खूब गाया है, गले से नहीं एकदम दिल से, उनके मन की बेचैनी तथा छटपटाहट एक एक शब्द से रिश्ती मिलती है। फिल्म चाहे बाजी हो या आरपार, सीआईडी हो या प्यासा, कागज के फूल हो या चौधरी का चांद, उनके स्वर की विविधता का कायल हो जाता है श्रोता। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल के, हाँ बड़े धोखे हैं इस प्यार में, सचमुच उन्हें प्यार में धोखा खाया, फिर भी गाती रही, ये लो मैं हारी पिया, कोई तेरी जीत नहीं।

साहेब बीबी और गुलाम फिल्म भले ही छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी की फिल्म रही हो, लेकिन छोटी बहू का दर्द, शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, पति की बेवफाई को गीता की आवाज़ ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना अमर हो गई। न जाओ वो सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, और मीना के साथ सिनेमा घर के अंधेरे में डूबे हजारों दर्शक रोए। गीता दत्त ने हर तरह के गाने गाए हैं, फिल्मबाजी के गीत जरा सामने आओ, जरा आंख मिला मैं श्रोताओं को उन्मादी स्वर मिलते हैं। बाई बाई का गीत ऐ दिल मुझे बता दे तू सुनकर मन प्रेम की सफलता से भर जाता है। प्यासा की गुलाबों का जीवन संगीत सुनकर मन अमृत प्यास में खो जाता है। आज सजन मोहे अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, लेकिन गीता ने जिंदगी भर जिंदगी का जहर पिया। कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी, वह शराब का जहर रोजाना गले के नीचे उतारती रही और एक दिन सबको अकेले छोड़कर चली गई।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। गीता दत्त और गुरु दत्त का प्यार परवान चढ़ने लगा। गीता और गुरु दत्त ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन गीता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बावजूद इसके दोनों ने परिवार के विरोध को दरकिनार करते हुए 26 मई 1953 को साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद गीता दत्त के 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। गुरु दत्त और गीता दत्त की शादी में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक अफवाहों ने इनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद गुरु दत्त ने गीता दत्त पर बंदिशें लगा दी कि वह सिर्फ उन्हीं की फिल्मों में गाएगी।

काम में प्रीति समर्पित गीता दत्त तो पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में गीता दत्त ने किस्मत से समझौता करना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गीता दत्त अपने पति गुरुदत्त के बढ़ते दखल को बर्दाश्त न कर सकी और उसने गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय कर लिया। इस बात की एक मुख्य वजह ये भी रही कि उस समय गुरुदत्त का नाम अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा जा रहा था, जिसे गीता दत्त सहन नहीं कर सकी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया।

हिंदी के अलावा गीता दत्त ने कई बंगला फिल्मों के लिए भी गाने गाए। इनमें तुम्ही जो आमार, निशी रात बाका चांद, दूरे तुम्हें आज जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है।

10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उसने भी अपने आप को नशे में डुबो दिया। 70 के दशक में गीता दत्त की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने एक बार फिर से गीत गाना कम कर दिया। लगभग 3 दशक तक अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने अंत 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से विदाई ली।

0: तो दोस्तों, आज के सुनहरे पल का सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन गीत अभी जिंदा है और गीता जी की वो आवाज अब भी कहीं दिल के कोने में गूंज रही है। वो सिर्फ गाने वाली नहीं थी, वो एहसास थी, जज्बात थी और हर उस दिल की धड़कन थी जो प्यार करना जानता है, ये इंतजार में जीता है। आज का ये सुनहरे पल यादों के नाम, जो ना कभी पुरानी होती है ना कभी बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित था बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर, रिकॉर्ड किया भरत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अब न उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने चुन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जानेमन, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई एक्टर अपने किरदार को असली बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? The Actors Eye सीरीज के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं, उसने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म का असली मतलब सिखाया था। वो फिल्म है 2 बीघा जमीन, जो 1953 में आई थी, और आज हम एक एक्टर के तौर पर जिस लेजेंड को स्टडी करने वाले हैं, वो है बलराज सहानी साहब। उनका अमर किरदार शंभू महतो। शंभू एक सीधा साधा किसान है। वो अपनी जमीन बचाने के लिए कलकत्ता पहुंच जाता है और वहां वो रिक्शा चलाने लगता है। एक एक्टर के तौर पर हमें बलराज सहानी साहब से 3 चीजें सीखनी चाहिए। जी हाँ, 3 चीजें। पहली है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के लिए बलराज सहानी साहब ने असल में, जी हाँ बिल्कुल असल में, कलकत्ता की सड़कों पर कई हफ्तों तक रिक्शा चलाया था। उन्होंने असली रिक्शे वालों के साथ समय बिताया कि वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, या रिक्शे वाले बीड़ी कैसे पीते हैं, उनके बात करने का लहजा सीखा। एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि आपका किरदार सिर्फ स्क्रिप्ट के पन्नों में नहीं होता है, वो असल जिंदगी में कहीं ना कहीं सांस ले रहा होता है, बस आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है। दूसरी सीख, फिजिकैलिटी एंड एग्जॉशन। फिल्म में शंभू की जर्नी देखिए। गांव में वो एक स्वाभिमानी किसान है, उसकी चाल सीधी है, लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचता है, वहां की तपती सड़कों पर नंगे पैर रिक्शा खींचते हुए उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। हाफती भी सांसें, पसीने से तरबतर चेहरा और पैरों के छालों का दर्द। बलराज जी ने थकान की एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने उस थकान को महसूस किया है। आपको सीखना चाहिए कि आपके किरदार की परिस्थितियां उसके शरीर को कैसे बदलती हैं। और तीसरी बात, सुपर ऑब्जेक्टिव यानी कि किरदार का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब शंभू की बात करते हैं। उसका हर एक्शन, उसके हर पसीने की बूंद के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो ये था कि उसे अपनी 2 बीघा जमीन वापस पानी थी। फिल्म का वो रिक्शा रेस वाला सीन याद है आपको, जहां शंभू की रेस एक दूसरे रिक्शे वाले से होती है, बलराज जी की दौड़, उनका हाफना और अंत में सड़क पर गिर जाना, वो इतना असली है कि दर्शक के तौर पर आपकी अपनी सांसें फूलने लगती हैं। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ एक इंसान के सर्वाइवल की लड़ाई है। तो भाई लोग, बलराज साहनी जी ने हमें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, ये अपनी आत्मा को किसी दूसरे इंसान के शरीर में डाल देने की कला है। जी, उसी का नाम है एक्टिंग। अब समय है आज के होमवर्क का। उसमें ये करना है कि आपने अपने पसंद का कोई भी डायलॉग लेना है जिसमें 4-5 लाइनें हो, उसको अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद अपनी जगह पर खड़े रहकर दौड़िए, खूब तेज दौड़िए या फिर जंपिंग जैक कीजिए, और जब आप पूरी तरीके से थक जाएं, हाफ जाएं, तो तुरंत कैमरा ऑन कीजिए और परफॉर्म करना शुरू कीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब आप हाफ गए थे तो आपके बोलने के अंदाज में क्या क्या चेंज आया, क्या क्या बदलाव आया, इसी बदलाव को नोट डाउन कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या बदलाव महसूस किया। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मास्टर क्लास के साथ। नहीं,

तो छू बोजान FM नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बगत।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में? जमाने बीत गए, बदलते

पंछियों की टोलियां रवां हैं अपने सफर पे, और दौराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

उतरना है जमीन पे तुझे, जाना है फलक पर अब, पर मिलोगे शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार छुपता है क्योंकि फासले हैं दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाए।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11। कार्यक्रम को एडिट रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।

आप सभी को मेरी तरफ से यानी किरणी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। शुरू के इस सिलसिले सरगम में आपका स्वागत है। आज हम यादों की उन गलियों में घूमने निकले हैं जहां हर गाने एक कहानी सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हसीन सफर। शुरुआत करते हैं उस पुकार से जो दिल की गहराइयों से निकली है, फिल्म गुमराह का ये नगमा जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा, रवि जी ने संगीत दिया और महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी। गाने के बोल है, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारी।

मोहब्बत की राहों में सहारा ढूंढती एक आवाज, सुनिए फिल्म हमसफर से मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज, असलम शफी का संगीत और आशा भोंसले जी की आवाज में दिल के सहारे कैसे प्यार करें।

अब पेश है फिल्म साजन का वो धुआंधार गीत जिसे समीर ने पिरोया, नदीम श्रावण ने संगीत दिया और एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया। और गाने के बोल है, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम।

0: लीजिए पेश है फिल्म कश्मीर की गली का ये झूमता नगमा, जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नायर की धुन और मोहम्मद रफी का मस्ताना अंदाज। गाने के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा

अगले गाने के बोल है बीगा बीगा प्यार का समा। यह फिल्म सावन से है। इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा, श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया और मोहम्मद रफी ने गाया।

साहिर का कलाम, रवि का म्यूजिक और आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और गाने के बोल है नीले पर्वतों की धारा।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। जारी है कार्यक्रम सरगम। अब जिक्र उनका जिन्हें दुनिया पंचम कहती है। फिल्म यादों की बारात से आरडी बर्मन का म्यूजिक, मजरू के बोल और आशा रफी की जुगलबंदी। गाने के बोल है चुरा लिया है तुमने।

जिंदगी का फलसफा और फिल्म आनंद, योगेश जी के अल्फाज, सलील चौधरी की धुन और मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज। गाने के बोल है कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

इश्क में दीवानगी लाजमी है। फिल्म कटी पतंग के लिए आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन ने संगीत दिया और किशोर कुमार ने गाया। गाने के बोल है, प्यार दीवाना होता है।

नज़ाकत और पुरानी दिल्ली की गलियां, फिल्म पाकीज़ा। संगीत नौशाद साहब का, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और आवाज़ दी है लता जी ने। गाने के बोल है इन्हीं लोगों ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है आशिकी का ये सुपरहिट गाना, समीर के बोल, नदीम श्रवण का म्यूजिक और कुमार सानू की आवाज़। गाने के बोल है बस एक सनम चाहिए।

0: प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में सुनिए एक ऐसा नज़्म जो दिल को छू जाए। फिल्म कभी कभी का गाना साहिर के लफ्ज, खयाम की धुन और मुकेश की आवाज़। गाने के बोल है कभी कभी मेरे दिल में। सुरों का ये कारवां आज यही थमता है। उम्मीद है आपकी रेडियो दोस्त किडनी की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, संगीत सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, जिसमें आपने पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: You are listening 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करती थी। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

शम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: पे असर। मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है जान।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये तो कौन मांगता?
1: जानी जानी चुले का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: Hey, Dutch Mail. Ek hey, Lata Mangeshkar. Ek hey, Radio Mitista. हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: सदियों का सफर तय करके जो बहती आई है वो मोहब्बत की कहानी सुनाने आई है। ये वितस्ता की लहरें हैं जनाब, जो रेडियो की तरंगों से दिलों को दिलों से मिलाने आई है, दिलों को दिलों से मिलाने आई है।
1: नमस्कार, आप सभी प्यारे और अजीज श्रोताओं को एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई दोपहर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला आपका हमसफर भरत सोपोरी। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना चाहिता स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो का, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी। वैसे भी जब भी फरमाइश की बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस कुछ चुनिंदा गाने बजेंगे और सिलसिला थम जाएगा, लेकिन हमारे रेडियो वितस्ता का

0: का, आपकी खुशियाँ, आपकी यादें और आपकी मोहब्बत, सब कुछ सिमट कर लाता है यह शो।
1: तो बस अपने दिल के तार हमारे साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी फरमाइशों का पिटारा अब खुलने वाला है। तो चलिए शुरू के इस सुहाने सफर का आगाज करते हैं और आज की पहली फरमाइश लेते हैं। पहली फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर। सईद मसरूर सुनना चाहते हैं फिल्म तेरे घर के सामने से गीत। गीत के बोल है तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत और करते हैं आगाज आज के फरमाइशी गीतों के सफर का।

0: पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधू। बंसीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जजबीर सिंह संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का गीत। गीत के बोल हैं, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, जिसे अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास अंबाला छावनी से आई है, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनका परिवार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जहां प्यार मिले से गीत। गीत के बोल है चले जा चले जा। इस गीत को आवाज दी है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। आइए पेश है कैप्टन अमरजीत शर्मा और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्ररूप नगर बबियाल अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सहरा का गीत। गीत के बोल हैं तकदीर का फसाना गाकर किसे सुनाएं, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायड़े, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहिरकर। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का गीत। गीत के बोल हैं, मेरी मोहब्बत जवा रहेगी। इसको अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो दीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।
1: मेरी मोहब्बत जवा

सुनाते हैं आप सभी को एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवा। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से गीत। गीत के बोल है अनहोनी को होनी कर दे। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर, किशोर कुमार और अन्य कलाकारों ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है मीनाक्षी, पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मेरठ से। भेजने वाले श्रोता हैं किरण और उनके साथ अन्य श्रोता हैं पिंकी, सुमन और ममता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत। गीत के बोल हैं ये शमा तो जली रोशनी के लिए। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

आप सभी के नाम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई महाराष्ट्र से भेजने वाली श्रोता है गीता सुनीता किरण अमित राजेश ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से गीत गीत के बोल हैं ले तो आए हो सपनों के गांव में आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है बेंगलोर से। भेजने वाली श्रोता है प्रेरणा, दीनू, पिंकी और अनूप। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जानी दुश्मन का गीत। गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जारी है। कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आपने आज का ये कार्यक्रम पहली बार सुना है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत के लिए, हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आपको लिखना होगा गीत के बोल और अपना नाम, साथ में आप कहां से लिख रहे हैं। अगर आपके साथ आपके परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं, आप उनके नाम भी स्पष्ट लिखें और हम उन सभी नामों को आपके फरमाइशी गीत के साथ बोल देंगे। आपको अपनी फरमाइश भेजनी होगी हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजे वाले श्रोता है रणधीर भांगड़, इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दूसरा आदमी से गीत। गीत के बोल है, बाहों में बाहें डालकर खेलने का मौसम आया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और हैप्पी आनंद। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिली का गीत। गीत के बोल हैं आए तुम याद मुझे, जिसे अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो लीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये गीत।

आप सभी श्रोताओं के लिए ले आ रहे हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है खेतल राजस्थान से। भेजने वाले श्रोता है लवीना शर्मा, धीरज शर्मा, हिताक्षी शर्मा और ओम शर्मा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोखों से गीत। गीत के बोल भी है अखियों के झरोखों से। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निशा सलमानी, इनके साथ अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रोटी का गीत। गीत के बोल हैं, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार सर ने। तो लीजिए पेश है इनकी पसंद का ये गीत। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यही हो रहा है समाप्त। आप आनंद लीजिए इस आखिरी गीत का और हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 10। आज का शीर्षक है शाम। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, लिखा प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशन आरजे किरनी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका शीर्षक है शाम, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ खूबसूरत शायरियां और गाने। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शाम की ढलती रोशनी में तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है, दिल की गहराइयों में तुम्हारी आवाज मुझे तुम्हारी ओर खींचती है।

चांदनी रात में तुम्हारी याद आती है, दिल की गहराइयों में तुम्हारी आवाज़ आती है, तुम्हारी आँखों में मैंने अपना घर बसाया है, तुम्हारे दिल में मैंने अपना ठिकाना बनाया है।

तुम्हारे बिना जिंदगी सोनी है, तुम्हारे बिना दिल की धड़कन रुकी है, तुम्हारी यादें मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, तुम्हारी आवाज़ मुझे तुम्हारी ओर बुलाती है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 10। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था शाम। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

काश तुम होते हमारे इन बहती हवाओं के संग तैरते, हम दोनों पानियों में पत्थर फेंकते, इस पानी को मैं तुम्हारी हथेली में रख कर ताकि अपना अक्स ढूंढ सकूं और माजी के दर्द को चंद पलों के लिए भुलाने की कोशिश करूं। काश तुम हमारी परछाई बन पाते, मैं पकड़ता और तुम भागते और मैं पकड़ने की कोशिश करता। काश तुम बादल बनते, बरसते और मैं भीग जाता। तुम आकाश के किसी कोने से मुस्कुराते और मुझे इन हवाओं के हवाले करते।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे
1: चंद अल्फाज इन सांसों को ताजगी बख्शते, तुम्हारी सुरीली आवाज रूह से बात करती, यकायक जिस्म पिघलते। और जन्म होता फिर से हमारा तुम्हारा इस वादी गुलपोश में, यहां दर्द के इन नगमों को हम अलविदा कहते, नई सुबह के साथ ही इन साजों पे छेड़ते मखमली धुने, तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाते, शायद एक गीत को हम दोनों जन्म दे पाते, एक नई अदाओ अंदाज के साथ।

खामोशी का एहसास अगर है तो बदलाव लाजमी है। अगर वक्त के साथ साथ हम चलें तो जाहिर है ये आकाश भी हमारी रहनुमाई करेगा। जमीन के हर जुज में तड़प है, कसक है और बेचैनी तारी रहती है। हम जी या मरे, जमीन और आसमान को इससे क्या लेना? सिर्फ यहां की धाराओं में बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, यहां कुछ भी हमारा नहीं। खाली आए और खाली जाएंगे, शायद कुदरत का यही दस्तूर है।

यहां आज इन प्यार की बरसातों में कोई तो आए पास बैठे, शायद फिर से ये मन बहल जाए। पिछली रात के पिछले पहर में जब ख्वाब में तुम भीगते हुए आए, रुक गई बारिश, घने बादलों में जैसे चांद दुल्हे का लिबास पहने सितारों की बारात लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रहा हो, जैसे कह रहा हो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अपनी पनाहों में संभाल के रखेंगे। तेरा शुक्रिया, आते तो हो ख्वाब में ही

लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियों को नाप लिया करते थे। इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे। इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते रहते थे। हमें इनकी खामोशी का एहसास भी हुआ करता था और इनकी सिसकियां हम महसूस करते थे, पर अब ये ख्वाब की तरह है जो हकीकत से कौसो दूर।

कभी अनजाने हादिसात यूं घेर लेते हैं कि अपने आप को अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अचानक कोई आकर दस्तक देकर चला जाता है, जज्बात को ठेस पहुंचाकर। उनके दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश, दूर तक साथ साथ चलने की उम्मीद तो जग जाती है, पर पल भर में मिट जाती है यूं ही बेवजह। और हाँ, बस यही मान के चलना पड़ता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं, सपने तो सपने होते हैं।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और रेडियो संचालिका कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।